के ऊपर हाथ आहां थोड़ा नीचे back to back tongue cheek to cheek tongue oh baby oh baboo.